समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: नकारात्मक भन्दा सकारात्मक सोचले अगाडि बढ्न सके विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा स्वागत गर्दै वडा सचिव आनन्द उपाध्यायले सद्भाव र एकताको प्रतीकको रूपमा भवन निर्माण भएको बताउँदै दिगो व्यवस्थापनका लागि सबैलाई आफ्नो ठाउँबाट लाग्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा वडा सदस्य हर्कराज भाट, निरू विश्वकर्मा, वडा नम्बर 8 का वडा सदस्य झपत प्रेमी, समाजसेवी भीमबहादुर शाह, कर्णाली करिडोर सामुदायिक वनका अध्यक्ष गोविन्द विष्ट, अमरावती सामुदायिक वनका अध्यक्ष जमान सिंह साउद, छतिवन सामुदायिक वनका अध्यक्ष विनोद भण्डारी, हिमालय राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद अधिकारी, पारस आधारभूत विद्यालय अमरावतीका प्रधानाध्यापक जीतराम चौधरी, अरूणोदय माध्यमिक विद्यालय खैरीफाटाका प्रधानाध्यापक कपिल राज भाट, जनता आधारभूत विद्यालय अमरावतीका प्रधानाध्यापक टेक बहादुर सार्की, बर्घर राजाराम चौधरी लगायतले बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रम सञ्चालन अनिल कुस्मीले गर्नुभएको थियो। भवन प्रदेश सरकारको 40 लाख र ओडाको 9 लाख लागतमा निर्माण भएको हो।
1: हवस् त, आजलाई कार्यक्रम हाम्रो जानकी सकियो। कार्यक्रमबाट म गीता चौधरी पनि विदा हुन्छु। नमस्कार।
2: राहुल कमल हैन बुखाइल बाटो त
3: हेरिन काका आई फुला टुरे बारीमा गेल रही तपो का देलिन बीस नेगा देवी की कैके लैके आयल बाटो
2: सपो कटक बीसक उपचार कर त सर्वदम सब उपचार केन्द्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ दिखा सपो कटक हो कि नहीं हो के पट्टा लगा ख सर्वदम सब उपचार में प्रयोग है ना एंटी भेनम से उपचार कर
3: सर्पदंश उपचार केन्द्र के विषय में मैं फिर सुनल त रहूँ
2: तर कुछ दिन कही आयाना तुरंत उपचार केन्द्र ले जा रही नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी भेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था अत्यक्त चिंता नहीं
3: पड़ाई ना तब ना तुम कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कही सकली बात
2: एम्बुलेंस आ पुगना समय लागे के था मर छवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केन्द्र में ले जा दी रे बाबू संदेश झट्ट बाहर आता
4: सर्पदंश प्रभावित जिल्लामा बेरमेनका समयमा जो उपचारकै ख ज्यान जोगिन उद्देश्यले सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा बा यी उपचार केन्द्रमा सर्पदंशक उपचार निशुल्क हुइथा सापनका कटाईले मनैनका मृत्यु नहुएकै ख सरकार सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुन एन्टिभेनम निशुल्क उपलब्ध गरेला बा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र सम्पर्क नम्बर ठहरलरह पठा सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइ लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेट्दिथा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
6: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार

0: पोली क्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोली क्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सबको रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोली क्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौ।
1: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
2: ओसीएमसी भनेको लैङ्गिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
1: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
2: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैङ्गिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
3: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
4: टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर, कैलाली।
1: आइ हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे सुरु करल मने घर सिज्जा सिक्ल।
5: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिल्बो मिल्बो निकरत का कैन हो का
1: मिस्तरान बर्जन हुकन घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो ना कबु कहुर घुम जाए त थाहा पाए।
6: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
5: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 5146।

0: के तपाईलाई थाहा छ?
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर, कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तू मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाउं से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां क्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अभ्यापने खुक्रे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाल

0: नौजहान पकड़ाओ ओ अर्जेंटीना ही हिते की स्पेन जीतल विश्वकप की उपाधि। आप पूरा खबर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के चौथो पंचवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण शुरू करल बा। योजना निर्माण के कार्यशाला के पहल दिन कृषि वन विपद क्षेत्र में सरकार वाला हुकरन से योजना निर्माण राय सुझाव समेत दैगिल बा। कार्यशाला में सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम आगामी दिन में आगे बढ़े नकलाक संचालन कर पर्ना कार्यक्रम संचालन करना कर्तिरलक कार्यक्रम है प्रभावकारी बनने तरीका थप कार्यक्रम उत्पादन करे पर्ना लगायत के विषय में छलफल हुई बा। छलफल में कृषि विपद ओ वन वातावरण करके तीन ठो समूह में विभाजन कर गिलेख हो। टीकापुर नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख मोती सिंह विकास सीजन अनुसार के खेती बाली में लागजिना रोग जाटो समेत प्रविधि संबंधी कृषि प्रविधि र विज्ञान संगे छलफल समेत चलाई पर्ना कृषि शाखा मार्फत करलक काम के बारे में जानकारी कृषक उकरण के सफलता के कथा समाचार में लाने पर्ना योजना बनाईना सुझाव देले बाटे। शिवशक्ति सामुदायिक बनवा के अध्यक्ष दीर्घ बहादुर तिरवा से आगामी दिन में सामुदायिक रेडियो से सामुदायिक वन के आगामी दिन में योजना संबंधी जानकारी कार्यान्वयन समन्वय अभाव रलकमा स्थानीय सरकार सामुदायिक वन हो वन डिविजन संगे समेत धरके छलफल चलाई पर्ना सामुदायिक बनवामा समेत प्रवेश करबे लग्न शुल्क सम्बन्धी जानकारी दिन जैसिन विषयमा कार्यक्रममा समेत पर्ना सुझाव दिले बाटे। सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के निवर्तमान अध्यक्ष रंग अधिकारी से आगामी दिनमा बिजुली इन्टरनेट के समेत पुरानो अव्यवस्थित तार से समस्या तथा जोखिम निम्ति तिरलक ओर से ऐसी संबंधी सचेतना ओ समेत सुधार के लाख रेडियो से प्रसारण करे पर्ना तथा छलफल चलाई पर्ना बटोले बाटे। कार्यशाला में सहभागी धन्यवाद देती सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के अध्यक्ष योगेन्द्र प्रसाद बजगाई सामुदायिक रेडियो है स्थानीय सरकार सामुदायिक बनवा तथा संघ संस्था सकुजानी मिलके सहयोग करना बटोले बाटे। संचार कर्मी समूह टीकापुर के अध्यक्ष दीपक थापा से कार्यशाला के उद्देश्य बारे में जानकारी करा गेल रहे। कार्यक्रम संचालन सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के स्टेशन मैनेजर एकेन्द्र तिमिल सिन्हा करल रहे और क्षेत्र के विषयगत छलफल नियमित हुई नबा। जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली से धनगढ़ी उपमहानगरपालिका चार स्थित एक फ्लैट मंच से सॉफ्टवेयर मार्फत अवैध मुद्रा क्रिप्टो करेन्सी डिजिटल मुद्रा कारोबार कतिरलक अवस्था में आरोप में नौ जाने पकड़ाव करल बा। प्रहरी के अनुसार धनगढ़ी चार में रलक व्यक्ति हुकरन फ्लाइट भाड़ा में लैके युवा युवती हुकरन धरके संगठित रूप में सफ्टवेयर मार्फत अवैध मुद्रा कारोबार कतिरलक गहना सूचना के आधार में प्रहरी टोली से खान तलाशी करल बटवागिल बा। खान तलाशी के क्रम में अवैध मुद्रा कारोबार में संलग्न रलक आरोप में नौजहान पकड़ाव करके अनुसंधान के लाख समेत जिला अदालत में म्याद थप करके समेत प्रहरी से जनायल बा। पकड़ाव पर्नामा कैलाली के गोदावरी नगर पालिका के एक के 34 वर्ष के प्रेम बहादुर साउत उदयपुर के त्रियुगा नगर पालिका 12 के 34 वर्ष के विपिन मगर भारत के नया दिल्ली के 26 वर्ष के रवि कुमार सूर्यवंशी भारत के हरियाणा राज्य सोनी पाट के समेत 27 वर्षीय दीपक कुमार जाट उसका चितवन के भरतपुर महानगर पालिका दुई रामनगर के 27 वर्ष के जितेन्द्र कड़ेल ललितपुर के महालक्ष्मी नगर पालिका आठ के 43 वर्ष के राजकुमार गौतम काठमाण्डू के कागेश्वरी मनोहर र नगर पालिका नौ के 25 वर्ष के रंजना चुड़ाल चापा के दमक नगरपालिका नौ के 26 वर्ष के हरिप्रसाद चापागाई और धनगढ़ी उपमहानगरपालिका तीन के 31 वर्ष के ज्ञानेन्द्र ढकाल रहल बतागिल बा। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो। टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 मा नयाँ

0: विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको व्यवहार सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू, व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू,
0: बीबीए र बीबीएस, ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी, फाइनान्स र मार्केटिङ,
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे, बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे।
0: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड, ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश, नेपाली, हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स,
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे।
0: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए, ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश, डेभलपमेन्ट स्टडिज, सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स,
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे, कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि।
0: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस,
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको,
0: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने,
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने,
0: आईसीटी, इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज, उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने,
1: उपचार कक्ष, ई लाइब्रेरी, फ्री वाईफाई, प्रोजेक्टर, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा, शुद्ध खाने पानी, प्राथमिक उपचार कक्ष, व्यवस्थित क्यान्टिन, खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको,
0: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने,
1: कक्षा 12 को पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
0: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस, टिकापुर, कैलाली।
2: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
3: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
2: टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर। भागीरथी मेडिकल टिकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा साउन 9 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग, मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान, एमबीबीएस एमडी, न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको धड़कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-770। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन साउन 9 गते दोस्रो शनि।
4: विश्राम पासे फेर से स्वागत बा। स्थानीय बाल अधिकार समिति टिकापुर ओ सरकार वाला हुकन बीच बाल संरक्षण के घटना व्यवस्थापन ओ बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी तालिम शुरू करबा। 3 दिने तालिममा टिकापुर भजनी के पालिका स्तरीय स्थानीय बाल संरक्षण समिति सदस्य ओ सरकारवाला सहभागिता जनाएलबाट तालिममा बाल अधिकार हो, बाल संरक्षणकी अवस्था, बाल बालिका उपर हुना हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण, व्यवस्था उनके पहिचान, स्थानीय बाल अधिकार समितिके भूमिका हो, जिम्मेवारी बारेमा छलफल हुइल बा। बाल संरक्षण हो, बाल अधिकार के लाख समेत बाल अधिकार समिति है घटना व्यवस्थापन घटना पहचान उजुरी दर्ता उसका जोखिम मूल्यांकन और सुरक्षा योजना के बारे में जानकारी देना उजिमे आज बनाईना उद्देश्य से कार्यक्रम करगिल खो ओल विजन इंटरनेशनल नेपाल के सहयोग हो बाल कल्याण संघ टीकापुर के आयोजना में शुरू हुई तालीम उद्घाटन करती ओल विजन इंटरनेशनल नेपाल के संयोजक मंगल शाह अपना उक्रा बाल मैत्री हो पोषण मैत्री स्थानीय शासन के लाख पालिका है सहयोग करती हलबोटोटी बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली संबंधी समेत जानकारी देना उद्देश्य से कार्यक्रम करलक बटोले साहसे बाल संरक्षण के घटना हुकरण के व्यवस्थित अभिलेखीकरण करना उद्देश्य से ओल्ड विजन से अपना सिस्टम बना के काम करती रहल बटेती बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली में बाल बालिका ऊपर हुईलक घटना दर्ता हो जोखिम में रलक हुकरण के प्रभावित बाल बालिका हुकरण आवश्यक सेवा समसमेत पहुंच पुगेना सहज हुईना बटोले कार्यक्रम सहजीकरण परामर्शदाता प्रेम बुढ़ा करल बाटिंग कलश कार्यक्रम संचालन बाल संरक्षण अधिकृत इंद्रराज जोशी करल खुई वृद्धा भत्ता सहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता केलक असोज भीतर परिचय पत्र नवीकरण करे पर्न होलबा बाल बालिका उपकरण के लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय से सूचना निकार के सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त करना योग्य लाभग्राही उपकरण की सूचीकरण तथा नवीकरण करना कहलबा जमना सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त करना सफु लाभग्राही उपकरण की सामाजिक सुरक्षा तेसरा संशोधन नियमावली 2082 के नियम 9 बमोजिम असोज मशांत भीतर सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र नवीकरण करना करैना उल्लेख करलबा हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव व जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार मनसून की न्यून चापे रेखा सरदार स्थान से कुछ उत्तर ओर रहल बा विभाग के अनुसार देश के अधिकांश ठाव में समेत मौसम बदलती बा कोसी बागमती गंडकी लुम्बिनी कर्णाली प्रदेश के कुछ स्थानों से पश्चिम प्रदेश के कम स्थान में मध्यम पानी पड़ती रहल बा सोमवार दोपहर के देशभर के साधारणतया मौसम बदलना बाकल से देश के हिमाली भूभाग के कुछ स्थान में मेघगर्जन चट्टांग सहित मध्यम खाल के वर्षा हिमपात के संभावना रहल बा पहाड़ी भूभाग में कम स्थान में मेघगर्जन सहित चट्टांग सहित मध्यम खाल के पानी पर्न संभावना बा इस वर्ष के सावन पहल सोमवार आज बिहान से पशुपतिनाथ लगायत के देशभर के शिवालय में भक्तजन हुकरण के भीड़ लागल बा बिहानी 3 बजे से लैके नई पशुपतिनाथ मंदिर के समेत चारू ढोका खोलगिल पशुपति क्षेत्र विकास कोष के सदस्य सचिव तीर्थ श्रेष्ठ जानकारी दिले बाट साउने झारी मफे समेत वास्त नई करके भक्तजन हुक्र बिहान से मंदिर दर्शन केलक समेत आयल सुनाइल बाट पशुपतिनाथ दर्शन में उया श्रद्धालु भक्तजन हुकरण के सहज सुरक्षित और व्यवस्थित दर्शन तथा विशेष पूजा व्यवस्थापन करगिल बा पदाधिकारी हुकरण के नियुक्त नई ढिला हुईला कोर से कोष के जनशक्ति फिर समेत कम रहल कोर से आवश्यकता अनुसार भर काम कर नई सकना स्वीकार करल बा खोजखबर में एक घड़ी फेन से विश्राम विश्राम पाक से फिर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीका प्रफम
5: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
6: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बञ्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन र्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पताल को ठेक्कै अगाडि संपर्क नंबर 9849588080
7: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो मैले दिन उहाँ आफ्नो अनुहार बिगर्के घर से बाहर नै निकर्थु।
8: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइको। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
7: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
9: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, हुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। कंचनपुर में च्याउ खोजे गैलक 14 महिला संपर्क विहीन हुई बाट भीमदत्त नगर पालिका 19 के बाघ फाटा के महिला संपर्क विहीन हुई लखई। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी नायक परीक्षक तेग बहादुर राउत के अनुसार भीमदत्त नगर पालिका 19 के दशरथ टोल बैठना वहांकुरा अटवार के बिहान के 11 बजे च्याउ खोजना बनुआलंग समेत गैल बताई गिलबा। शुक्ल फाटा राष्ट्रीय निकुंज के मालू मेला समेत पोस्ट से निकुंज भीतर छिरल दशरथ टोल के बैठना समेत सकनी चौधरी, सविता चौधरी, उस्तक सानी चौधरी, सकिया चौधरी, राम रमा चौधरी, उस्तक लक्ष्मी चौधरी, मनीषा चौधरी, रीता चौधरी, सुनीता चौधरी, विमला आगरी, उस्तक सुमित्रा सुनार, शांति सुनार, प्रतीक्षा सुनारो, शिवानी सुनार संपर्क बेहन हुई रावत से बटोरे बाटे वहां उकरा 9 जाने ओ 5 जाने के समूह बना के च्याउ खोजी निकल रहे। अर्जेंटीना ही हितैती स्पेन फीफा विश्वकप 2026 के उपाधि जीतल बा। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित के न्यू जर्सी स्टेडियम में हुईलक फाइनल खेल में अर्जेंटीना है 1-0 से पराजित करती स्पेन 16 वर्ष पाछे विश्वकप के उपाधि जीतल बा। स्पेन उपाधि जितैनामा समेत फेरन तोरेस से करला गोल ने पर्याप्त बनल। तोरेस से समेत खेल के 106 मिनट में स्पेन के लाग गोल करती अग्रता दिखायल रहे। तोरेस के समेत पेनाल्टी बॉक्स भीतर बाउंस हुईलक समेत बॉल है आपन बाउ गोरा से प्रहार करती क्रस बार के समेत ठीक तरह से जाली में छुअल रह। निर्धारित 90 मिनट में दोनों ओर से समेत गोल हुई नहीं सकल पाछे खेल अतिरिक्त समय में धकेल गेल रह। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के चौथो पंचवर्षीय रणनीति योजना निर्माण शुरू, पहले दिन कृषि वन और विपद के क्षेत्र में छलफल। टीकापुर में स्थानीय बाल अधिकार समिति और सरकार वाला हुकन के लग बाल संरक्षण घटना व्यवस्थापन और बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली संबंधी तालीम। धनगढ़ी में सॉफ्टवेयर मार्फत अवैध मुद्रा कारोबार कर लग आरोप में 9 जहन पकड़ाओ। अर्जेंटीना है हिटैती स्पेन जीतल विश्वकप के उपाधि। बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुन सकिया बेके खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीका प्रेफ एम सुनती विराम।

0: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेन्ट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
1: साउन 16 गते तेस्रो शनिवार का दिन
2: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
0: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बडी रिसाउने झिझो मान्ने बरबर

0: 25-63-77-72।
1: आई बुढल्ला सुन्तो कि नै वा नन्दी एक भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उने ना पट्टा नि पैना त
2: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आतु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटा सरा तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान से के कतरा सुघर बना कन ल बाटी
2: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684-41-208 ओ 98486-39-261।
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड़ जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: दन्त रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बाल बालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।

0: नरेश दादू मैं तो अपना फल ऐसी डर ऐसी आ गई है बहुती कहाँ बाटी
1: ओ गोंडी में सुटल बाटी बाबू चोली न भरी
0: हौजी कहाँ से काटल अपना हरक आदर पावे तो सफा सुखर बने लो बाटी तर फिर काटी तो जा रहा अपना हन
2: यहाँ पोली ऊपर कट लगो नानी अपना एम्बुलेंस है खबर तो कर लो बाटा कटा बेर में कहा पुना हो
0: ना ते बहुजी हमारे बाटी अपना हना कुछ नहीं हुई बिन गुआरा हना जिन चलेगी वो नरेश दादू एम्बुलेंस लेना समय लागे से था लगे के मोटरसाइकिल बाकल अच्छी उन्हें में बैठा कर भाजी है ना सर पड़े सा उपचार केंद्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
1: ये बेला तक खाना जात फे दी है न्यू इट ना स्वयं सेविका दीदी
0: हो अब ना ठीक करी डॉक्टर और निकट सम बेरमेन कुछ से खवाई नहीं हुई
3: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाए ना सपवा कटलक अंग स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस गेलक लुगा गरगहना घड़ी पेटी मुंडी बाकल से फफर करा दी बेरमे अप्रेल से झन समस्या बिना बिल घोषित बेरमे न शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सपवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खबरना के कठ असी कर्ण से रक्त संसार में समस्या हुई सीखा जही ले करबेल सपवा दसलक शरीर का भाग काट का फाक पौना अवस्था थे आई सीखा
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकी थे पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेव दिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उष्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ हो टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल हे रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रत गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
4: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मैं नहीं जाए, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
4: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: ए सन्तेकी आमा, पर कान्छा खालाको बिहाको न्युज आएको छ, कसो हो त जाने विचार छ कि नै त?
2: आफ्ना कान्छा भाइको बे नगरिकन पनि भएन, जाउँ भने भयाको मंगल सूत्र बन भाँची गयो।
1: यतिका लागि त सामुएल जोलस बनेको बरु अहिले जाउँ, एक दुई दिनमा त फ्याक्ट्री बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ।
2: आज त सन्त्याका बाले मनकै कुरो हर्यो, छोट त बाई जाउँ।
3: सामुएल ज्वेलर्स सुनचादीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचादी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार, सम्पर्क नम्बर 98-68-44-1208, 98-486-39-261।

0: मुका पिएरैठ कबु पेन्सिलेरैठ कबु झनै फटाका आजिठ काकना हो बाबा फ्यो ओष्टपाटिन गटिलो ठाउँ से झ्वाला आन्ला से त लड्का सामान निहराइत
1: ओहो यी बुढा लेख्ने का हुइतिस जरम भर भर बराइति रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कैठ कबु पेन्सिल हेरा कैठ कबु झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झ्वाला लाना नि छिट्ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रटगे यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबु पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस कटरास बाटी ये बुरहक ढंग कबु पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर थी
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: ला फिर यो गाड़ी ने धोखा दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
4: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
3: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
0: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
3: ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
5: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-48-57-18-28

0: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी?
1: आमा, मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न, लाउन कस्तो रहला छ।
0: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
1: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त, पछि पनि काम लाउन सकियो नि।
0: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
1: न्यू अछाम जाल्पा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
2: न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टिकापुर। न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गरगहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चुरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसनका गरगहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98688147979, 98246025। अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98246628225।
3: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
4: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस, टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588080।
5: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम, टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
6: जय गुरु बाबा। घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपने के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज की विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम निशाना के सलाह के बैठक सबको रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संगन स्वागत के संगे अभिवादन करे चाहू मैं बैठक में वैद्य के साथ देहटे बाबू रत्नापुर मगर सगरको कसिनमा हाल खबर बिर्को कुशल मंगल आराम हुई बी मैथ एकदमै आराम बाटो आफ्नो कपी एकदमै आराम हुई बिकन भरपूर आसन बाटो सगरको भर्खर भर्खर अब दुई तीन दिन हुई गेल, दुई चार दिन हुई गेल, पानी अब कहो गोटगाट देखा पर्ता, पानी पर्ता के करलब थोर थोर थोर भर्खर खेतुआ लगेना समय असक लगती बाबे का मतलब भर्खर बर्खा जागला सक करती बाबे तो फिर टिकापुर म टिकापुर के आसपास में पानी पर्ती बा टिकापुर में फिर पर्ती बाने ठावी पराटा कि नै पार्थ अपने उग्रे कसिन बाटी का करदी बाटी कसिका दिन बिटैटी बाटी अपने उग्रे कहर बाटी और कार्यक्रममा चाहिँ आजै सगरको विशेष गरी असार महिना अरुवा के हाम्रो सावन महिनामा प्रवेश कैसे करबाटी सावन महिना के पहिलो सोमबार हो आज और सावन महिनामा विशेष गरी हरियर चुरिया हरियर मतलब हरियर कुर्ता हरियर सुरुवाल हरियर ब्लाउज हरियर अघ्रान मतलब सावन महिनामा हरियर लगैना मेरा मतलब लगैना चलन भा वही समाज में तो हरियर परे और सोमवार के दिन पूजा करना चलन भा मठ मंदिर में जाकर तो अपने उनके प्रकार से पूजा कर रही भी और मजा के सफर सुपुर के हरियर परियर चीज लगा के अपने उनके चाहे मंदिर में जाके पूजा पाठ करके आ रही भी कहे कि सावन महीना के पहलो सोमवार हो लागत में और गैल फे हुई भी लक्की पावे तो जे जहां भी तर आज पानी गोटगाट साथ देह सौनाई देह स्पेन करती ओके सावन महीना कस्ती के बिटेना बाटी कोई कोई व्रत फे बैठल भी लसुन प्याज मासा मासुनाई खाके फेन व्रत बैठना करट हुई भी कोई और व्रत बैठल फे हुई भी लागत में तो कार्यक्रममा कसिनबा आफ्नै ठाउँमा चहलपहल साउने चहलपहल कसिनबा कौजा कर्तीबाटी कार्यक्रममा आज हाम्रो विशेष सावन के पहिलो हप्ता के सोमबार हो पहिलो मतलब महिना के पहिलो हप्ता के पहिलो सोमबार रही सावन के तपाईँले आज दिन हाम्रो विशेष गरी सावनीय सम्बन्धी गफ गरौँ, यानि कि सावन महिनामा कसिन कसिन कैजहरू सम्बन्धित बातचित बटी आफ्नो व्रत बैठल बाटी नै बैठल हुई कजा कजा सावन के कजा कजा आफ्नो पालन कर्ती बाटी सम्बन्धित गफ गरे आए आज निशाना नै लगात।

तू दिल के सुकून मोर मैना बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रम जोली आप लोगों के लिए भर्खर रेडियो खोलो लिख कल से यह रेडियो टीकापुर एफएम 1.1 मेगाहर्ट्ज उसके के हमारे वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टीकापुर एफएम एप हमारे पात्र मार्फत आप लोग हमन सुने सकती का नाम टोकन जानकारी करती बारू जे जहां भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में बिपटाइल में यात्रा में जहां रहे से कार्यक्रम में सहभागी जनाजी का नाम अपलोकन अर्जी अनुरोध और निवेदन करना चाहूँ जहाँ से फे हमन कॉल करे सकती और इंटरनेट के पहुंच हुई गाल से जहाँ से फे अपनों के हमारे संगे सुने सकती और वहीं से फे अपनों के हमन कॉल करे सकती होकर लखन लाइन बा सुने

9551 अर्थात 0915612255 नम्बर खुला के लिए बारी फटाफट डायल करी कार्यक्रम में सहभागी जन एक लाख शून्य 9551 के लाइन मार्फत अपने को हमारे रमाइलो गई का नाम अवलोकन जानकारी करती बाटो तो डायल करते करके कार्यक्रम में आईटी करबी का नाम अवलोकन जानकारी करना चाहूँ विशेष करके अपने कन तो विशेष करके आईबी कल से आज निशाना नहीं लगेना हो आज हमें विशेष करके गप करब अपने कन के संगे विशेष करके हमारे बात बटवा विशेष करके आज एक दिन कार्यक्रम में मतलब सावन लागिल संगे सावन के महीना संगे संगे अब सावन के मतलब समय में विशेष करके महिला दीदी बहनों के मतलब विशेष करके सावन में मतलब हरियर परियर लगेना समय रहत और व्रत बैठना भेन समय रहत तब बीमारे अपने के घरे में कैसे अपने के ठाव में कैसे अपने कैसे करती बाटी विशेष करके व्रत बैठल बाटी नहीं हुई और पहलो सोमवार थे हुई सोमवार के पड़ल और सावन महीना के तमारे मठ मंदिर में फेन जैना चलन बा तो अपने गैली नहीं गैली कैसे बा का बा विशेष करके कार्यक्रम स्वस्थ गप करे कार्यक्रम में आई सुनने कानाबे 5162155 के लाइन खुलाई बा ठीक ठाक गीत जोड़ा गीत के बाद समय ने बारू डाल करते कर भी सुनने कानाबे 5162155 लाइन खुलाई बा।

कोही तो आए महीन अपन बनाए बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रम जसले आफ्नो गला कार्यक्रममा बाट मिशन वर्कर रेडियो कलहबी गलसी हो रेडियो टिकापुर एफएम 1.1 मेगाहर्ज उससे के हमार वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्रो मार्फत आफ्नो हाम्रो सुन्ने ठिकानामा आफ्नो जानकारी गर्दै पारौ जे जहाँ हुई बी खेतमा बारीमा दोकानमा मकानमा काममा धन्दामा बिजीमा व्यवटालमा यात्रामा जहाँ रहे सिधन कार्यक्रममा सहभागी जनाइकनमा आफ्नो जानकारी गर्न चाहम विशेष गरी आफ्नो त फटाफट चाहिँ आफ्नो डायल गर्दै गर्दै 091-5-61-255 अर्थात् 091-5-61-255 लाई नै एकदमै हाम्रो खुल्ला कैलाबारी फटाफट डायल गरी यो कार्यक्रममा सहभागी जनाइकन आफ्नो कुरामा रमाइलो सहभागिता रहे सँगैले मौसम सुहाना बा आज पक्कै फेरि आफ्नै ठाउँमा कसिन बा मौसम पानी उनी परता किन आफ्नो ठाउँमा हाम्रो ठाउँमा त पानी परता आफ्नो ठाउँमा परता कि नै बिल्कुल आफ्नो चाहिँ कसिके दिन बिताइति बाटी आजकल पक्कै फेरि खेतवा हेरे जैन ऐना हुई ठुई लागत महीन अब आजकल त विशेष गरी सबके घर घरमै पहिले भैँसा बर्दा रहँ कर आप चाहिँ भैँसा बर्दा पल्न चलन थिएन लगभग सुन्ने सुन्ने हुई भावे लागत में ना कोई कोई घर में जैबिल घर में पैबो नहीं तो लागत सब घर में पावर टीलर हो सकल बा पावर टीलर के खेतवा जोतना हुई थी रहत और विशेष विशेष कोई कोई घर चाहिए भैंसिनिया पलना गैया पलना बा हो सके छगरी छगरी बकरी छेरी भेरी भेरी पलना चलन बा तो वहां का निकला फिर घास काटना हुई थी तरह पहले तो और ज्यादा रहे बर्दा भैंसा निकला फिर घास काटे करे भैंसिनिया गैयन के लग घास काटे करे तरह आप चाहिए कुछ कम हो गिलवावे तो लागत मिन आजकल खेत और जाए थी पानी उन्हीं हेरा थी भी खेत में मलोल छीट न हुई शायद मलोल फैन छीटा थी भी शायद लागत और अपन दिन दिन सारे आज तक बीतती हुई किसान दाजू भाई होगा अघि जहाँ उहिले चाहिँ नि दुबारिक समय हो मिहिनी खाना बेला मिहिनी मतलब विश्राम लेन बेला तो बेलामै अल्छी लग्न बेला हो तो म आफ्नो गन चाहिँ अल्छी नलागेकन उद्देश्यले कि मजा मजा गीत सङ्गीत सुनाइदिई बारो त फेन्स एक ठाउँ गीत सुनाबा थिए हाम्रो आफ्नो गनको लागि गीतके पाछ मैले बात डाल गर्दै गर्दै 091-5-61-255 लाइन खुलाइबा

हजुर सावन आइगो सावन गीत हम जल्दी राणा थारू भाषा के गीत रहे अपने के लग और अपने पके भे मनोरंजन होल हुई और मजा लागल हुई कना भरपूर आस्ते बाटो तो जे जहाँ हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में बिपटल में यात्रा में जहाँ रहे से कार्यक्रम में सहभागी जनाबी 0995-61-255 अर्थात 0915-61-255 लाइन खुला बा लाइन में चाहिए अपने हमन कल कर भी बात करे लग हमारे संगे रमाइल गप कर आपका नाम आया दुकान अर्जी अनुरोध और निवेदन कहना चाह रू तो फटाफट चाहिए अपने डायर कर भी कार्यक्रम में सहभागी जना की अपने को हमारे रमाइल सहभागिता रही रमाइल गप ही रमाइलो बातचीत ही कहना मैं कहना चाह रू तो कार्यक्रम में आई बिकल से अपने को हमारे रमाइलो गप हुई करीब करीब 1:45 बजे से हम यात्रा कर भी साथ में मजा मजा की संगीत में अपने सुनाई की बात का नाम है अपने जानकारी करते बार तो कौजा करके दिन बीते बाटी पके भी हमारे संगे आए गप करे बातचीत बताए हरेक साता के सोमवार मंगलवार बुधवार और बिहार हमारे अपने के संगे आई थी और अपने के संगे रमाइलो का थी कहना मैं अपने जानकारी करती बार तो फटाफट चाहिए डायल करते कर भी 0995-61-255 अर्थात 0915-61-255 लाइन एकदम खुला बा का नाम है प्रोग्राम जानकारी करम अर्जी अनुरोध और निवेदन फेन करम तो फटाफट चाहे अपने कार्यक्रम में सहभागी जनाते कर भी कार्यक्रम आई थी कर भी करना जानकारी करती फैन से एंजॉय करी ठाकुर मायलो गीत से गीत के पास में नहीं बारू डाल करते कर भी 0915-61-255 लाइन खुलाई बा

0: हजुर बिल्कुल रमाइलो गीत के पास भन्छ स्वागत भयो कार्यक्रममा कार्यक्रममा बाटोमा मिसन मेके साथ भेटे बाबु रत्नपुरमा और अपने उम्रीबाटी हमार संगे संगे हमारे यात्रा करती बाटी तो अपने हमारे कार्यक्रम में फटाफट चाहिए डायल करेक्ट बना रहा शून्य एकानब्बे 561-2555 अर्थात 0915612555 लाइन एकदम खुला कार्यक्रम आईटे करबी कार्यक्रम में सहभागी जनरेट करबी अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता रही नाम जानकारी करम अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता के लगो हो तो कोई टेलीफोन लाइन में आगे बाटे मैं वहां को बोल करना चाहम कि कहां से हजुर राम राम कोई टेलीफोन लाइन में आलोटे लाभ हजुर राम राम हजुर राम राम
1: राम राम
0: के बोलली कहाँ से
1: मैं टीकापुर समितिपुर से शंकर चौधरी बोलत हूँ
0: शंकर जी कैसे बा हाल खबर
1: बढ़िया बा हेरी बरखा लागल सावन लागल पानी आई थी बा
0: कौसा करके दिन बिताई थी शंकर जी आजकल समितिपुर में बैठे
1: व्यवस्थे हो पानी आई थी बा तीन शाम बैठी बैठी बरखा लागल सावन लागल बा
0: अभी को पानी पड़ती बा समितिपुर में नहीं
1: हजुर हजुर
0: आजकल दिन अस्ति के बिटट को हो घर में बैठना
1: हजुर हजुर
0: तो आजकल चाहिँ को एकदम सत्तार लागत खेत रुआ कि एकदम सत्तार लागत गांव घर में कसिन भा सावन के आज पहिलो सोमवार हो महिला दीदी
1: बहन पूजा पाठ करते रमाइलो
0: कार्यक्रम में सहभागी जनैली खुशी लागल कार्यक्रम में विशेष करके महिला दीदी बहन हुआ हरियर परियर चुरिया लगैना चलाओ बा नहीं विशेष करके हरियर चीज है नही टारगेट बना के चाहिए पहिरना चलन बा सोमवार प्रत्येक सोमवार के पूजा करना चलन बा व्रत बैठना चलन बा कौसे करे कई जायत काना कुछ पटा बा अपने है
1: अब वहन के कुछ देर मांग पूरा हुई के वहन के रोहे व्रत बैठे हैं
0: कसिन मांग विशेष कर मांग तो मांग अब
1: विशेष के हर एक चीज की तो केकरो का पूरा हुई केकरो का मांग पूरा जैसे उनके हो
0: वहीं के सोचल अनुसार के मांग मतलब उनके मन के भीतर के रहल मांग कार थी ना वहाँ उतरे नहीं जन ही नहीं कि चीज है टारगेट करके मांगना चलाओ तो नहीं हो
1: मांगना चलाओ तो मैं किसी पैसे कम का मांग थे उधर नहीं कर सकम ना
0: ठीक है भाई कार्यक्रम में सहभागी जन एकदम खुशी लागल अब हम एक गीत बजा अपने लग अपने किन किन सुनाई चाह अभी नाम ली
1: अब किन किन सुनना बोलने में मोर किरण भाई बात है हमारे रोशन भाई बात है बारे संगन बारे सुनना जन नहीं जाना सबको जान सुनना चाहते
0: हैं हजुर अब एक लाख हमारे विदा हुई राम राम वहाँ फोन कर रही समितिपुर से रमारो का फिर ओके अपने को हमारे कार्यक्रम में सहभागी जन टेकर भी सुनने 91-561-255 के लाइन खुले बा ठीक ठोक गीत जोड़ गीत के पास में नहीं बटू डायल करते कर भी सुनने 91-561-255 लाइन खुले बा

0: हजुर मदमदा गीत सुन्दै सन्ध्या ठीक एकैछिन व्यापारिक विषयमा रहे व्यापारिक विषयमा के पासमा नै बाटो रेडियो छोडको गहुँ पनि देवी तस्तमलाई एकैछिन सर्ट कमर्सियल ब्रेक
1: ना सांप कुछ नहीं कराई सांप कुछ नहीं करता लिया वो अपने चल गई कुछ कराइल वो सब कुछ सांप बिखा फिर नहीं रहता
2: बिखा हो कि नहीं हो कसी कसी ना दाई
3: लिया नेपाल में पा दिना बिखा सांपन का विषय में सुन एक थोड़ा ठह गई था जो खास कह खा, रातिक समय में घर भीतर बैठा से कटला से निबाई फे सकत तर कटलक पास देह भाग जो निचलना कह सास फैर जो निशेकना में से लक्वा हुई से था और रथ डोम जोन बड़ा रिसाहा में हिक रथ इनका फाट फूले थ डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह खा, संजय बिहान देख पड़ निकर कटला से फिर लक्वा हुई से था वो और रथ कैदी जातक सांप निकर कटला कल से कटलक भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बैठे था रकत से पाती होकर रकत बहना हुई से था उसने कहा हमारे देशक तराई सक्कू भूभाग में पा देना बगोक ने न फुनका रहना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिंक न कटाई एकदम खतरनाक रहा
4: बर्खा छा को अनाज फिटी न समय में सापन का कटाई अथवा जसाई का घटना झूर बिना कथा बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा ना सीबे सापन का जसाई का घटना झूर बिना कर लग पा जाए
5: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नी रहा वह फिर यदि सपा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
1: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसे पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: हुक्का पिए रही था कभी पेंसिले रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उसका पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो
4: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा संबंधित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ
3: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
4: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
3: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
4: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
3: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
4: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
3: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि
4: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
3: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
4: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
3: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
4: आईसीटी इंग्लिस ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
3: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खानेपानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
4: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
3: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
4: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
3: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली
5: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
6: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहीं ना हो का
5: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बने लबाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफी ओस्ट बनी हो ना वट्र फिर पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कमरा घूम जाए था पाए
7: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
8: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोपराइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26
9: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्युरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
10: साउन 16 गते तेस्रो शनिबारका दिन
11: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
9: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिजो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने,
11: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला।
10: डाक्टर आउने दिन साउन 16 गते तेस्रो शनिबार
7: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 0008 र 9825 73 77 72।
12: हजुर, व्यापारिक विश्रामकै पाँच एफएम स्वागतमा कार्यक्रममा लभलभ कार्यक्रममा आफ्नो सँगै गफ गर्दै गर्दै मजा मजा गीत संगीत सुनाइदिई सुनाइदिई कार्यक्रमकै निर्धारित समय डगर काटेला गला टाटा एकजना बेला होगिलबा उमार त्रबटेलसम्म फोन गरेका साथीहरूले कार्यक्रम नियालकै साथीहरूले आफ्नो सबको जन धन्यवाद दिँदै अन्तिममा छोट रमाइलो गीत छोड्दै मैमी सेनाका छ हाम राम राम जय देव जय गुरु शुभ दिन आपके शुभ रहे रेडियो टिकापुर एफएम सुन्टेकर्मी।

0: ए भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन्त बाउ के पाउँछ त्यहाँ?
1: ए त्यहाँ त्यहाँ छ नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
2: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
3: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन प्यान्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
0: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
4: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतोल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला टेरस।
5: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला टेरस,
6: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
4: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 98484463673 र 98164602204।
7: ओह त हेर बुढिया, बर्खाक समय थेबा पखारिक मुहका रुपकल बाकी मुसुवा आयल कलस आब मुसुवा खुस्ती सब कफे आइसक था।
8: ओहो हो निका ठ्याक्क सम्झनु, घरक आँजा पाजा झसास थे बाहर से कच्छा का तहिल बा काटा पर्ना रह।
7: अस्सी करी हेर बुढिया, ओ सिन्हो कलसे काल मिट्टी नाओ टेला रोटी पकाकर बासी खाई, दूसरा सर परिवार मने मिलकर सर सफाई कर भी, दूसरा आंजर पांजर रहल फोहर का व्यवस्थापन कर भी तो नहीं हुई।
8: हुई था वो बुढ़वा, असिन जाला मदर ध्यान घास फोहर घसवास भी था उमा साफ नुख का बैठल रह सकते ना।
7: वह और से तो कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू मई मिलकर घरक आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी, कालिक लानल काटे थे घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल, बखारिक मुकर थे के पैठनी सीखना में चबदार पड़ल, दूसरा घरक आंजर पांजर फसफारो सफा फूल से साफ अना उत्साह कम हो जाए।
8: कल शनिश्चर थे हो ज्ञान का फुर्सत थे बा
9: साफ बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े था, इ मौसम में आपन बसारा में पानी पैठना पीलक ओर से सुखा ठाव का खोजी में उतरा बाहर निष्कट।
10: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर साफ मानव बस्ती लग आई सक
11: विश्वास लगना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिख सकते था।
12: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: छी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनों कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परितल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 26 20 300 98 656 92 026

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमकै सन्झेको 5 बजे थारू भाषाको खोज खबरमा आफ्नो स्वागत बा खोज खबर सेमै सीता चौधरीकी राम राम अपने हुक्रा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 100 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्र नेपाली पात्रमा फेसिलिटीहरुबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से बाजरा की हिमाली गांवपालिकामा जीप दुर्घटना 9 जना घाइते सार्वजनिक विधा पुनरावलोकन करना कार्यदल गठन करना खतरा के पोर दुर्व्यवहार कला कार्यक्रममा शिक्षक सहित 3 जना पक्राउ बुधबार से वर्षा कम होना खबर बाजरा के जिला की हिमाली गांवपालिका पास क्यूडी स्थित कुआडी क्यूडी भितर कच्ची सड़क खण्डमा सोमबार दिनकी हुलक जीप दुर्घटनामा चालक सहित 9 जना घाइते हुलबाट प्रहरी के अनुसार दिनकी करीब 1:25 बजे मिहेतमा दुलाचौरमछे दुलिला खोलातर्फ जैटी कलक सुप प्र 01-001-187-8 नम्बर के जीप सड़क के ऊपर मोड़ बसे करीब 10 मीटर तर खस्के दुर्घटनामा परल्बा स्थानीय घटनाबारे 1:35 बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजरमा जानकारी कराइल्पा छ। अस्थायी प्रहरी पोस्ट कुवाडियो इलाका प्रहरी कार्यालय बुढी नन्दामसे प्रहरी टोली तत्काल घटनास्थलतर्फ खटल रहे। दिनके करीब 2:30 बजे हो प्रहरी टोली घटनास्थल पुगे। बुझक जीप चालक हिमाली गांवपालिका 2 नातीखोलवा निवासी गरी 25 वर्षीय जनवीर बुढ़ारलक खुललबा दुर्घटनामा चालक सहित 9 जना घाइते हुलबाट घाइते मध्ये चालक जनवीर बुढ़ा 40 वर्षीय धर्मलाल बुढ़ा 31 वर्षीय मिजरा बुढ़ा तथा हुम्लाके ताजाकोट गाउँपालिका पास निवासी गरीब 40 वर्षीय मरसिंह बुढ़ाके अवस्था मध्यमरलक प्रहरी जनैलबा हस्तक हुलाली ताजाकोट पास निवासी 20 वर्षीय अस्मिता थापा 28 वर्षीय जंग शिव बुढ़ा 20 वर्षीय गोरख रोकाए 27 वर्षीय लोकेन्द्र बुढ़ा व गरीब 9 वर्षीय सुषमा बुढ़ाके अवस्था सामान्य रहलबा उनके शरीर के ढेर सिंह भागमा चोट लगलग प्रहरी जनैलबा घाटे धन सकुझान उपचार केलक अस्पताल पठेना प्रहरी हुटिरहल प्रहरी जनैलबा घटना के कारबारे थप अनुसन्धान हुटिरहलबा मोरङ्गे सुन्दर हरि नगरपालिका 10 स्थित सुकुवाना माध्यमिक विद्यालयमा छात्रा के ऊपर अमर्यादित व्यवहार कला कार्यक्रममा शिक्षक सहित 3 जना सोमबार प्रहरी पक्राउ कलक अनुसन्धान शुरू गर्दा घटना पाशा विद्यालय आरोपी 3 जना शिक्षक कर्मचारी निलम्बन गरे। सुन्दर हरैचा नगरपालिका निष्पक्ष छानबिन गरी कानूनी प्रक्रिया अघि बढ़ने निर्देशन समेत दिएबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ अनुसार पक्राउ पर्नमा सुन्दर हरैचा 10K 40 वर्षीय प्रदीप भट्टाई सुन्दर हरैचा 2K 40 वर्षीय किशोरलाल गद्दचारो सुन्दर हरिचा 12K 35 वर्षीय अविरल मास्केरहलबाट उहाँ कुनकै विद्यालयकी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूबाट थप अनुसन्धान हुटिरहल प्रहरी जनैलबा। मोरङ्गे प्रहरीकी अनुसार सूचना अधिकारी डीएसपी मकेन्द्र कुमार मिश्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुलक गुनासो प्राप्त उजुरीकी आधारमा अनुसन्धान आघा बढ़ेलक जानकारी दिलबाट अनुसन्धानकै क्रममा अन्य व्यक्तिकै संलग्नता पुष्टि हुलक कारण बमोजिम कार्यवाही गर्न उहाँकै काहेरहलबा। घटना पाशा सुन्दर हरैचा नगरपालिकाकी विज्ञप्ति जारी गर्ती विषयप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण हुलक जनैलबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश राज कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आरोप पी शिक्षक तथा कर्मचारी तत्काल निलम्बन गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न विद्यालय निर्देशन देलक उल्लेख गर्नबाट खोज खबरमा यसरी विश्राम विश्वास फेरि सुन्तिरेवी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको व्यवहार सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडिज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गतेदेखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको।
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड दिइने।
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने।
2: आईसीटी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने।
1: उपचार कक्ष, ई लाइब्रेरी, फ्री वाइफाई, प्रोजेक्टर, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा

0: मनसूनी वायु के प्रभाव रलग मनसून के न्यून चापीय रेखा सदृश थेहोर उत्तरतर्फ रलग वर्षा हुई रह जानकारी दिलवाट विभाग के वरिष्ठ मौसमविद मीर कुमार अर्याल काल देश के धेर सिंठाव वर्षा हुई फे बुधवार से वर्षा कम हुई जैना जानकारी दिलवाट वहां के अनुसार आज दिन के देश के धेर सिंह भूभाग के कुछ ठाव तथा पहाड़ी भूभाग के धेर ठाव मेघगर्जन और चट्यांग सहित मध्यम वर्षा के संभावना बा कोशी बागमती गंडकी लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई के दुई ठाव तथा मध्य प्रदेश के कुछ ठाव मध्यम वर्षा हुई सकना विभाग पूर्वानुमान बा विभाग के कोशी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई के कम ठाव वर्षा के संभावना बा बागमती गंडकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भाग के एक दुई ठाव भारी वर्षा के संभावना बा आज रात के मध्य प्रदेश कोशी बागमती गंडकी लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई के कुछ ठाव मेघगर्जन चट्यांग सहित मध्यम वर्षा के संभावना बा वस्तक कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भाग के एक दुई ठाव मेघगर्जन चट्यांग सहित मध्यम वर्षा होना संभावना विभाग जनेवा विभाग के अनुसार कोशी बागमती गंडकी लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई के एक दुई ठाव रात के फे भारी वर्षा हुई सकना तर इस क्षेत्र में बढ़िया पहरो डुबा तथा गेगरान बहाव के जोखिम वाला क्षेत्र में आवश्यक सतर्कता अपनाइना आग्रह कलबाट। यह समाचार संघ खोज खबर वाले जिना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फेर सेक्चो बाजुरा की हिमाली गांवपालिका में जीप दुर्घटना 9 जना घाइते सार्वजनिक विधा पुनावलोकन करना कार्यदल गठन करना छात्रा के उपत दुर्व्यवहार कल कारक में शिक्षक सहित 3 जना पकड़ाउ बुधवार से वर्षा कम महीना गीता बकला खोज खबर तरह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देखिए बकला खोज खबर से मैं सीता चौधरी विदाई रू अगर पास 6 बजे की खोज खबर सुन सीखी सामुदायिक रेडियो टीका प्रशासन सुनती रवि राम राम।
1: हमरा सहयोग कैखल डेंटी बाटी देन मोटरसाइकिल घुमा कर धरने करी ना
2: बैठा बैठा रम्याना रसा रसा मर पास बैठाई वो एकजना ब्रह्म्याना पकड़ का बैठी उपचार केन्द्र सम पुगाइबेर ब्रह्म्या बेहोश हुई से ना पीला को से पास से पकड़ का बैठा पड़ता का
3: ब्रह्म्याना अगर हुई ना कही के मई पकड़ के बैठा टू सुनील जी अपना देशी मोटरसाइकिल स्वयं सेवक हुई कारण सर्पडंसक ब्रह्म्यान उपचार केन्द्र लेना सजिलो हुई बा
2: एम्बुलेंस और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पा दी था कतना ठमटा मई असक मोटरसाइकिल स्वयं सेवक उपलब्ध बाट सजिला से वो झट्ट पाजिला से ब्रह्म्यान चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो बिना मेर का सुचा का लगभग एंटी भेनम महिला उपचार केन्द्र में लै जाए पड़ता
1: अपना उम्र जैने करी ना मई द्वार लगा सके ला दे
2: वहां न कतलक सपक फोटो खींचना बाटी कर से उठेलन बिहा फोटो खिला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
3: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाई नहीं तो ढील हुई जी
4: सफ डज दारण कर से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमे आना अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच में सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगभग एंटीवेनम उपलब्ध होना सर्पदंश उपचार केन्द्र में लै जा रही सप्प कटलसे मोटरसाइकिल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
5: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org मा हेर सेर्दिथा
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
7: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पतालमा। उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू,
1: हाड़ जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा, जोड़नी को दूरबीनबाट शल्यक्रिया,
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यमबाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा,
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा, ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यमबाट पेट को शल्यक्रिया सेवा,
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा,
1: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा,
0: रोग सेवा,
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा,
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार,
0: र सिटी स्कैन सेवा,
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू, एसडीयू, सीईओएनसी र बाल बालिका का लागि एसएनसीयू सेवा,
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा, बायोकेमिस्ट्री, इम्युनोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पारासिटोलॉजी, सेरोलॉजी, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, डिजिटल वीडियो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे सेवा, ईसीजी, फिजियोथेरापी सेवा, अस्पताल का अन्य सेवाहरू, स्वास्थ्य बीमा सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा,
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा,
0: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, सब वाहन सेवा,
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा, मेडिको लिगल सेवा,
0: सब परीक्षण सेवा, सर्पदंशको उपचार,
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा इकाई,
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा, एआरटी सेवा, टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा,
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488, सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35-8, उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।

0: बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे ग्वज आगिलिन अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोज्ती खोज्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाकर आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकर ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41268 और 98486 39261

0: भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु।
1: के गरौ त म, यत्रो उपचार गरिसके, कति ठाउँमा लगिसके, तर निकै हुन्न।
0: दाई बरु एक पटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि, के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि।
1: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एक पटक।
2: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू: ओपीडी सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, एक्सरे सेवा, ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा, ईसीजी सेवा, मेडिकल सेवा, ईएनटी सेवा, प्लास्टर सेवा। बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। डाक्टर हेमन्त स्वार, टिकापुर, ब्लक नम्बर 7, गोल पार्क नजिक, गुम्बा रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 091-560-095, मोबाइल नम्बर 98-484-27-359।

0: एटक अब्बू झलै फटाका आजी काकना हो काकना हो बाबा फिर ओस्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं सीख ठो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रत गैया झोला उठो हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला में।

दुईठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी। कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 0915162555 साता के बुधवार दिन के 1 बजे जरूर डायल करे हुई कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: मिर्जापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
1: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
0: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
2: हेरिन काका, आई फुला टुरे बारीमा गेल रही, तपो काट देली, बिस निकाल देबी कि कैके लैके आयल बाटो।
3: सपो कटलक बिसक उपचार कर त सर्पदम सब उपचार केन्द्र ले जाई पठा कहूँ कमल भाई, वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ। बिखार सब पकटलक हो कि नहीं हो के पट्टा लगा ख सर्पदम सब उपचार में प्रयोग होना एंटी भेनम से उपचार कर।
2: सर्पदम सब उपचार केन्द्र के विषय में मई फिर सुनल त रहू
3: तर कुछ दिन कही आया न तुरंत उपचार केन्द्र ले जा। नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एन्टी भेनम समेत निशुल्क उपलब्ध करे था। अत्यक्ष चिन्ता लिए परत
2: खाई ना तब न तुम कुछ फेर नहीं हुई, मैं एम्बुलेंस आना फोन कई सकले बाटे।
3: एम्बुलेंस आपू में समय लागे से था मर छवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केन्द्र में ले जा।
4: बाबू संदेश गैरो का झट बाहर आ।
5: सर्पदंश प्रभावित जिल्लामा बेरमेनका समयमा जो उपचारकै खर ज्यान जोगिना उद्देश्यले सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा बा। यी उपचार केन्द्रमा सर्पदंशक उपचार निशुल्क हुइथा। सापनका कटाईले मनैनका मृत्यु नभएकै खर सरकार सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुइना एन्टिभेनम निशुल्क उपलब्ध करैला बा। आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र सम्पर्क नम्बर ठहर पठा। सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेर्दिथा।
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।